0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করে আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ান ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকান এহি তেরিবে ওয়াগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনেব্বায়া বারা গাদাকান্দে ফাদান
1: ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ 33 ಮಿನಿಟ್ ಕಮೆ ಗೆಣಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: ఇస్లామీ తారిఖ్ తెరే కురవే దాతు
1: ముఖద్దస్ తంతన ఇస్లామీ తౌసీబ్ బినా కురుంగా ముహిమ్ దౌరింగ దా కుఫావా సమాంవి తంతనుగె వాహకత
2: కమంగ్ బల్కిస్ కి అస్తు రస్కం ఉతి కొంగ్ సరహద్ దెక్యాతో దెనిగన్నం ఆర్కియోలజిస్టుం వరబ్బుడు సమాకం
0: రత్త బినా కురిగోత ఇల్మంగ్ హివర్ది బింతౌకా ఇల్మంగ్ హిత్త ఫ్రాదిగ
1: కురి పోషి
3: కొమె హోమ దోహె కే హెందులు అగ్గడి తిరియు
1: రిపీట్ అంగార్ దోగి వెందురు ఎకే జహర్ అది బుద దోగిరి అగ్గడి తిరియు एंगा सतरस्ते के साल इस न्यू किलोहर्ट्स मीडियम बेव आदि अध्ययन वे मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: इंतजार कर लो
1: वगुता हालताय को लोब इम्तिहान करेवे मिदुनिये का दरिफुर देखे इंतिहाय लोब वा बप्पे
0: दरिफुर आधे वा बप्पा काता निदुमो करें कल वाह का अड़ो हालन चाहिए दो
4: एकों बप्पे प्रॉमिस वेबा ಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊರೆ ನುನೆದ
1: ಏ ಬಪ್ಪಗೆ ಹೋಫೆಂದ ಕುಂ ಹುಟ್ಟಾಲಿ ದರಿಫುಳುಗೆ ಹೋಫೆಂತ ಹಗೀಗತ ಕಂ ಹತ್ಯಾದಿರು ಮಟ್ಟಕ ಏ ಬಪ್ಪಗೆ ದುಣಿಯೇ ಆಬಾದ ಕುರು ಹುಟ್ಟಾಲಿ ಏ ದರಿಫುಳುಗೆ ದುಣಿಯೇ ಫುರಿಹಮ ಕೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ
0: ಆರಂಭಕೊಂಡೆ ಆತೆ ಸ್ಕುರು ಏನೇ ಮಂಜರೋಡು
1: ಲಫ್ಸುತಕ ಕುಂಪುನೆ ನುದೇವೇನೆ ಕುರುಬಾಣಿಯಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ರಿಹುಂ ಹುರಿ ಹಿತೇಕ್ಕೆ ವಾಹಕ
0: ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಾಡುಂಗೆನಿಸ್ತೇನೆ
1: ರಿತ್ಸಾಹಿ
4: ಮಪ್ಪೆದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕ ವಾರಲ್ಲ ಅವಿವೆ
3: ಕೊಮೆ ಬುರಾ ಸಚ್ ದುವಹೆಕ್ಕೆ ಮೆಂದುರು ಕೋರಿ ಎಗಾರ್ ಗಡಿ ಫಣರೆ
1: ರಿಪೀಟ್ ಹಮೇರೆ ದಿಹಗಡಿ ತಿರಿಹು ಅದಿ ಹುಕುರು ದುಹುಗಿರೆ ಮೆಂದಂ ಬಾರಗಡಿ ತಿರಿಹು एंगा सतरस्तेक सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अध्ययन हुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: दिवे राज से गेड़
5: तित्ति तित्ति कुछ
4: काम पे शुमुगे कोगें कोक्का बिस्मिक किया कोक्को में गेगिया वन्ने और सलांगुआ कोक्को में कियानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
5: ತಿತ್ತಿ ತಿತ್ತಿ ಕುಜ್ಜೆ ಅಂಗಾರ ದೂಹುಗೆ ಹವೀರು ಫಹಿಜೆಹರ್ ರಿಪೀಟ್ ಪುರಾಸದ್ ದೂಹುಗೆ ಹವೀರು ಹತರುಗಡಿ ಫಣರಾಗ ಅದಿ ಆದಿತ ದೂಹುಗೆ ಹವೀರು ಫಹಿಜೆಹರು ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜೇಗಾಡು

0: Mamma, badu aveja.
1: Tarifla, soni agat buni. Mamma ibe che mi ke muluwa.
0: Papa, gaadi che hani hai.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस पर से भी
5: मामा फोन है का हाँ माधवार यह तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन होगा डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनीन गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदेमा

0: हंगार अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं